0: हेलो जिमी, राहुल आ गया अपने पॉइंट पर।
1: नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉबी भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया। श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।